0: नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे।
1: सच्चा नाम मेरा आधारो,
0: साच नाम उधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया,
1: प्रसाद सुख मनाया, वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया,
0: सदा कुर्बान कीता गुर
1: गुरु बैठो जिस दिया एवरे आईया,
2: कह नानक सुनो संतो सब तरह प्यारो,
0: सच्चा नाम मेरा आधारो,
1: पंज शब्द
0: कर सपागे, कर सपागे शब्द
1: वाजे,
0: चला जत करतारिया,
1: पंच दूत वस किते काल कंठक मारिया,
2: तुर करम पाया तुर जिन को से नाम हर के लागे,
1: कह नानक तस खोआ तत कर।

रचया करे गुरु कलगी धर जगदीश सो हमरी रचया करे गुरु कलगी धर जगदीश बोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

राम ना बिन को थिर नाही, जियो बाजी है संसारा, दृढ़ भगत सची जियो, राम ना वपारा, राम ना वपारा, गम पारा, गुरमति धन पाइय, सेवा सुरत भगत हे साची, विचों आप गवाइय। हम मतहीन मूर्ख मुगध अंधे, सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सहावे, अन दिन हर गुण गाए, आप कराए करे, आप जियो, आपे शब्द सवारे, आपे सतगुर आप शब्द जियो, जुग जुग भगत प्यारे, जुग जुग भगत प्यारे, हरे आप सवारे, आपे भगती लाए, आपे दाना, आपे बीना, आपे सेव कराए, आपे गुण दाता, अवगुण काटे, हिरदे नाम वसाए, नानक सद बलहारे, सच्चे विटो, आपे करे कराए, गौड़ी महला तीजा, गुर की सेवा कर पिरा जियो, हर नाम त्याए, मंजो दूर न जाए, पिरा जियो, घर बैठिया हर पाए, घर बैठिया हर पाए, सदा चैत लाए, सहजे सत सुपाए, गुर की सेवा खरी सुखाली, जिसनों आप कराए, नामो बीजे, नामो जमह, नामो मन वसाए, नानक सच नाम वडियाई, पूर्व लिखिया पाए, हर का नाम मीठा पिरा जियो, जा चाखे चित लाए, रसना हर रस चाख मुए जियो, अन रस साध गवाए, सदा हर रस पाए, जा हर पाहे, रसना शब्द सुहाए, नाम त्याए, सदा सुख पाए, नाम रहे लेवलाए, नामे उपजे, नामे बिनसै, नामे सच समाए, नानक नाम गुरमती पाइय, आपे लय लवाए, एह वडाणी चाकरी पिरा जियो, धन छोड़ परदेस।

दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्स प्यासे मिल दर्शन सुख सारा मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू माने एक जी अवर सब राली माने ता एक अलेख ठाकर जिने सब कल धारिया तद बचन कर कै वस किया आद पुरख बनवारिया तू आप चलिया आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक ता सरण तुम्हारिया मोहन तद सतसंग त्यावे दर्श त्याना मोहन जम नेड़ न आवे तद जपे निधाना जम काल तिन को लगे नाही जो एक मन त्याव हे मन बचन कर्म जे तुद अराद से सबे फल पावे मलमूत मूड़ जे मुगद होते से देख दर्श सुगयाना बिनवंत नानक राज नह चला पूर्ण पुरख भगवाना मोहन तू सफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत भाई कटंब सब तारे तारिया जहान लहिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन कहया तैन जम नेड़ न आया बेअंत गुण तेरे कथे न जाहे सतगुर पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी जित लग तरिया संसारे गौड़ी मोहल्ला पांचवा श्लोक पतत असंख पनीत कर पुने पुने बलहार नानक राम नाम जप पावको तिन किल बिखदा हनहार शांत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याए मना मुरार मुकंदे कटिए काल दुख फादो दुख हरण दीन सरण श्री दर चरण कमल अराधिय जम पंथ बिखड़ा अगन सागर निमुख सिमरत साधिय कल मले दहता सोध करता दिन सरैन अरादो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दमोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया भगत वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाई है तम अंध कूप ते उदार है नाम मन वसाई है सौर सहित गण गंधर्व मुन जाना गुण अनक भगती गाया बिनवंत नानक करो कृपा पार ब्रह्म हर राया चेत मना पार ब्रह्म परमेसर सर्ब कला जिन धारी करना में समर्थ स्वामी घट घट प्राण अधारी प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम अपारो सरण जोग समर्थ मोहन सर्ब दोख बिदारो रोग सोख सब दोख बिनस जपत नाम मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समर्थ सब कल धारी गुण गाओ मना अचौत अबनासी सब ते ऊच दयाला बिसंबर देवन को एक है सर्ब कर प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किस है काल कंटक लोभ मोह नास है जी जाके प्रभ बस है सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण कहला बिनवंत नानक एच पुन्नी जापत दीन दयाला गौड़ी मोहल्ला पांजवा सुन सखिए मिल उदम करे हा मनाए लह हर कंत मान त्याग कर भगत ठगौरी मोह है साधु मंत है सखी वस आया फिर छोड़ ना जाई ए रीत भली भगवंत नानक जरा मरण पै नरक निवार पुनीत कर तिस जंत सुन सखिए ए भली बिनंती एहो मतांत पकाई है सहज सुपाए अपाद रहत होए गीत गोविंद गाई है कल कलेस मिटे भ्रम नस मन चिंदिया फल पाई है पार ब्रह्म पूर्ण परमेसर नानक नाम त्याई है सखी ऐश करी नित सुख मनाई प्रभ मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सबाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवड भागी माए सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे मेरा मन तन हर संग हिलिया
सुन सखिए मेरी नींद भली मैं आपन रा पैर मिलया भ्रम खोयो शांत सहज स्वामी प्रगास पया कोल खिलया वार पाया प्रभ अंतर जामी।

होत जात सब धूर पवड़े धद्दा धूर पनीत तेरे जनवा धन ते उजे रोचया मनवा धन नहीं बाछ स्वर्ग न आछ अत प्रीत साध रज रच धंधे कहा ब्या पे ताहू जो एक छाड़ अन कते न जाहू जाके हिये दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पे कर ज्ञान ध्यान मन हठ मिलियो ना कोय कहो नानक कृपा पई भगत ज्ञानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातो अनक जगत सातर कर पातो ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सो कहत सुनत कछ जोग ना हो ज्ञानी रहते आ गया दृढ़ जाके उसन सिर समसर सब ताके ज्ञानी तद गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी सलोक आवने आए श्रेष्ठ मैं बिन बूझे पास ढोर नानक गुरमुख सो बुझे जाके भाग मथोर पौड़ी जा जुग मैं एक को आया जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मैं उर्द तप करते सास सास सिमरत प्रव रहते और ज परे जो छोड़ छिडाना देवन हर मने बिसराना धारो कृपा जिसे गुसाई एत्यत नानक तिस बिसरो नाही सलोक आवत हुकम विनाश हुकम आग्या भैन ना कोई आमन जाना तै मिटै नानक जह मन सोए पौड़ी एऊ जी बहुत गर्भ वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो अपाया जाते तरो बिखम ए माया कर कृपा सतसंग मिलाए नानक ताकै निकट न माए सलोक किरत कमावन सब असुभ कीने तिन प्रभ आप पस आपन हो कर नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी एके आप करा बनहारा आपे पाप पुन विस्थारा या जुग में जित जित या जुग जित जित आपे लायो सो पायो जो आप दवायो वा कांत न जाने को जो जो करे सो फन हो एके ते सगला बिस्थारा नानक आप सवारन हारा सलोक राज रहे बनता बिनोद कुसुम रंग बिख सोर नानक ते सरनी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जहर चो तह ते बंधन पाहे जह बदकतू न छूटिए सागत उकमाहे हो करते कर्म रात

नानक वे परवाह पौड़ी लल्ला ता कह लवे न को एक आप अवर न हो होन हवन हार होत साधे आया वो आकांत न काहू पाया कीट हाथ में पूर समाने परगट पुरख सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर ते जपना सलोक आत्म रस जह जानिया हर रंग सहजे मान नानक तन तन तन जन आए ते परवान पौड़ी आया सफल ताहू को गनिय जास रसन हर हर जस भनिय आए बसे साधु कह संगे अंदर नाव नाम त्यावे रंगे आवत सो जन नाम में राता जाको दया मया विधाता एक आवन फिर जोन ना आया नानक हर कह दर्श समाया सलोक जास जावत मन होए आनंद बिन से दूजा पावो दुख दर्द तृष्णा बुझै नानक नाम समाओ पौड़ी यैया यारो दुरमत दो तिसे त्याग सुख से जेसो यैया जाय परो संत सरना जय आसरिया भाव जल तरना यैया जन्म न आवै सो एक नाम ले मने परो यैया जन्म न हारिया गुरपुरे की टेक नानक ते सुख पाया जाके ही रह एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ईति उत के मीत गौर पूरे उपदेशया नानक जपिए नीत पौड़ी अन दिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए ए बिख्या दिन चार छाड़ चलियो सब कोय काको मिता काको मात पिता सुत धिया ग्रह बनता कछ संग ना लिया ऐसी संच जो बिनसत नाही पत सेती अपने कर जाही साध संकल कीर्तन गाया नानक ते बोहर न आया श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी तलवंत मृतक कहिए नानका जय प्रीत नहीं भगवंत पौड़ी गंगा खड़ सातर हो गयाता पूर कुंभ करेज कर माता ज्ञान ध्यान तीर्थ इस नाने सोम पारक परस अध्यानी राम नाम संग मन नहीं हेता जो कछ कीनो सहु अनेता वाते उत्तम गनो चंडाला नानक जय मन बसे गोपाला सलोक कौंट चार दे दिस ब्रह्मे कर्म किरत की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख पावड़ी कका कारण करता सो लिखियो लेख न मिटत को नहीं होत कछ दो बारा करने हर न भूल नहारा काहू पंथ दिखा रहे आप काहू उद्यान परमत पछताप आपन खेल आप ही कीनो जो जो दिनो सो नानक लीनो सलोक खात खर्चत बिल छतर है टूट न जाए पंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाहे सुमार पौड़ी खखा खूना कछ नहीं तिस समरथ कह पाहे जो देना सो दे रहे हो पावे तह तह जाहे खर्च खजाना नाम धन या भगतन की रास खिमा गरीबी अंध सहज जब तरह गुण तास खेले बिगसे नंद स्यों जाको होत कृपाल सदीव गनीव सहावने राम नाम।

प्रभ को सिमरै तिन सद बलियारी। प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरै तिन अणद कनेरे, प्रभ को सिमरै बसे अरनेरे, संत कृपा ते अनदिन जाग।

कने रे सगला श्रेष्ठ को राजा दुखियार का नाम जब तो है सुखिया ला करो री बंधन पर अर का नाम जब ते निस्तर अनक मार अंग तिख ना बुझावे अर का नाम जब ते अगावे जय मार गय जाते अकेला ते हर नाम संगोत सुहेला ऐसा नाम मन सदा ते आई है नानक गुरमुखा परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जबत तय पार पुराही अनक बिघन जय आए सिंगार हर का

पेखे सर्व टंडोला पूजस नाही हर हरे नानक नामे अमोला। अष्टपदी जाप तप ज्ञान सब ध्यान खड़सा तुर सिमरत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्यागम मध्य फिरिया।

रचना जे नरचाई। रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर दिखै कीता अपना जे उत सदी वड्याई।

जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पा।

वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नाओ। सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है घर नाउ निध आवे ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौं साहिबजादियां चालियां मुक्तियां अठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया बन छकिया। देग चलाई तेग वाही देग के अंडट कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। जिन्हां सिंह सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते। बंद बंद कटवाए खोपरियां लवाइयां चरखड़ियां ते चढ़े। आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं आरिया सिखी केसा सवासा संग निभाई। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका। सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब। तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फतेह बिरध की पैज। पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान।

दर्शन परसियां गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरशों कुरसों चट्टी है।

तपा जिस कृपा करे सो पूरा प्रधान जिसनू बल धरै जिसे जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुर मन धरै जिसे जराए आप सोई अजर जरै।

लिखा हुआ है, बड़ा गहरा शब्द है। विचार अगे जाके कर दे थोड़ा जा, संगत ने बेनती थोड़ा थोड़ा अगे आ जाओ, साथ संगत सगने होके बैठा करो।

कबीर साहिब कहते कि मैं उस परमात्मा का कूकर हाँ, मैं उसके दरबार का कुत्ता हाँ उस परमात्मा दे, ते मेरे गल विच उहदे नाम का पटा पिया होया, गले हमारे जेवरी जंजीरी, क्योंकि जिस डॉग के गल च पटा पिया होवे ना उहदी निशानी हुंदी वी ये डॉग जिहड़ा कुत्ता है ये मालक का है, इहदा कोई मालक है, ते जिहड़ा उदा ही होवे स्ट्रे डॉग होवे उन्हें खसमा होंदा तो कोई मालक नहीं होंदा। ते कबीर साहब कहिंदे मैं नाम वाला मैं मालक वाला, और जिस तरह मालक मैनू खिंचदा है ना जिधर नू लैके जांदा मैं उस पासे चला जांदा, उहदे हुक्म दे विच रहिंदा भाणे च रहिंदा। जिस तरह लोकां ने कुत्तियां दे नाम रखे होंदे ना छोटे नाम रखे होंदे, किसी का ना जैकी रखिया है टॉमी रखिया है टाइसन रखिया है, इस प्रकार के नाम नाम रखते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं मेरा भी ना है जी, मेरा भी ना रखिया, अपना ना दसते हैं बाणी।

हे परमात्मा तेरे द्वार दे उत्ते एक बड़ी कीमती चीज मिलती पर मिलती निवे होके अपने आप नू कुकर जाने नीवे तो नीवा जाने ते रब फिर चोरी च खैर पा दे क्योंकि खैर दे रूप विच सारी चीज मिलती सियाणप दे नाल नहीं मिलती। असी इत्थे कुछ ना कुछ लैण वास्ते आउंदे आ गुरु दे कोलों सब तो कीमती चीज जिहड़ी है वह है सहज तेरे द्वारे धुन सहज वो सहज नाम रूप दे विच मिल जाए अवस्था रूप दे विच मिल जाए चौथे पद विच मिल जाए ये गुरु किसी ना किसी ढंग दे नाल बख्शिश कर दिंदा है अगर सेवक पात्र बन जाए। मंगते हो किसी मंगले ने कि शेख फरीदे खैर दीजै बंदगी अपनी बंदगी दे अपना सहज दे परमात्मा क्योंकि तेरे द्वार तो ही ये चीज मिल सकती है और मार्केट दे विच्चों किसी होर जगह तो अगर आदमी चाहे कि मैनू सहज मिल जाए मुश्किल है। सहज केवल ते केवल गुरु दे कोलों मिल सकता है ये आनंद केवल ते केवल गुरु दे सकता है।

गुरु अर्जन देव महाराज उन्हां दे कोल सहज सी, सहज ये कित्थे हुंदा है? कोठड़े में कोठड़ी ये शरीर है, शरीर दे अंदर मन है और शरीर नूं जलाया जा सकता है और मन जेड़ा है ये भी माया रूपी अग दे विच सड़दा है। मैं पिछे भी बेनती की थी सी कुछ दिन पहले कि एक अग्न ऐसी है जिहदे च मन ते हिरदा ये सड़दा है। गुरु असी कहने गुरु ना शरीर है, गुरु ना मन है, गुरु की है? गुरु है सहज अवस्था। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। गुरु सहज अवस्था च रहिंदे ने, इस करके गुरु नूं जलाया नहीं जा सकता, गुरु दे मन नूं भी नहीं जलाया जा सकता। गुरु ना मन है, गुरु ना शरीर है, देह नहीं। अज जहांगीर समझदा होवेगा कि मैं गुरु अर्जन देव जी नूं जला दिता है, उन्हां नूं अग्न भेट कर दिता है, बड़ा खुश होएगा चंदू, बड़ा प्रसन्न पृथ्वी चंद बड़ा खुश होएगा। उन्हूं होएगा कि मेरी साजिश जिहड़ी है वो कामयाब रही, मैं कामयाब होया, मैं गुरु अर्जन देव नूं शहीद करके जला के अपने मकसद विच पूरा मैं हो गया, हुण गुरगद्दी दे रस्ते च मेरे लिए कोई रुकावट नहीं रह गई। चंदू बड़ा खुश होएगा, कहेगा कि मैं अपना बदला जेड़ा है बेटी दा वो आज पूरा कर लिया। पर उन्हां नूं नहीं पता गुरु जेड़ा है ये ना मन है ना तन है। गुरु दा तन भी नहीं जलाया जा सकता, गुरु दा मन, मन जेड़ा है ये माया रूपी माया दे विच माया रूपी अग्नि च जलदा है। गुरु अमरदास महाराज ने कहा कि जैसी अग्न उधर में है तैसी बाहर माया। ये माया रूपी अग्न जिहड़ी मन नूं रोज रोज सड़दी है, पर गुरु दा मन ते गुरु दा तन इन्हां अग्नियां विच नहीं सड़दा, नहीं सड़दा। इस करके अज पंज सदियां बाद धन गुरु अर्जन देव महाराज जी शब्द रूप गुरु दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच विराजमान ने और संगतां उन्हां नूं प्यार करदियां ने, अज भी जीवित ने। उन्हां नूं खत्म करके भी खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हां दे कोल सहज है। सहज की अकथ कथा है निरारी। सहज की अगर असीं डेफिनेशन करन की कोशिश करिए, जिस आदमी दे उत्ते बाहर दे हालात का कोई भी असर ना हो, उन्हों को तंग ना कर सके, उहदी बिरती नूं कोई हिला ना सके, तत्ती तवी दे उत्ते भावे तपा दवे, लेकिन गुरु उत्थे बैठ के भी कहे कि तेरा किया मीठा लागे, और नाम पदार्थ नानक मांगे। अंदर एक कोठा है, कोठे के अंदर फिर छोटी कोठड़ी है, उत्थे ओ सहज दी अवस्था जिथे परम कोठी विचार ते गुरु दे। कबीर साहब कहते हैं ये कोठड़ी ये सहज दी अवस्था मैनु प्रदान की है, मेरे हिरदे च 24 घंटे एनसी आनंद बनिया होया।

विश्वे चसिया कड़िया पहरा थिति वारी महो हुआ सूरज कुरुतनेक नानक करते के केते वेश राग तना

सदा पर फुले घट घट संपट है रे जाका अभंग सभा संग है सादा आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंता जिसे प्राप्त तैसी लहना संत चरण ओ आयो सरना हाथ चढ़ियो हर साल ग्राम को न

क्या पा जाना क्यों भानी कंत मुहे अनाथ गरीब निमाने कंत पकर हम की नीराने जब मुख प्रीतम साजन लागा सूख सहज मेरा तन सुहागा।

ऐसी ऐसरी कराम पाई उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ पाए ठिगोरी सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया वर्त नेम कर थाके पुने चरना तट तीर्थ पवे सब धरना से उभरे जे सत गुर की सरना माया मोहे सबो जग बाधा होमे पचे मन मुख मूह राखा को गुर नानक बा पकर हम राखा सा मोहला पांजवा सर्ब दुख जब बिसरे स्वामी ऊ इहा उहा कामना प्राणी रह संत तृपता से हर हर तिहाए कर कृपा अपने नाय लाए सर्ब सुख प्रभ तुमरी रजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब कछ दिया

मन तन सब हरिया कलमल दोख सगल पर हरिया। आसा महला पांजवा नाम जापत मन तन सब हरिया कलमल दोख सगल पर हरिया। सोई देवस भला मेरे भाई हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। साध जिना के पूजे पैर मिटे उपद्रह मन ते बैर। गुरपुरे मिल झगर चुकाया पांच दूत सब वस गत आया। जिस मन वसिया हर का नाम नानक तैसू पर

नकीम गणे नैन पसंद सोए पीख मुस्ताक पई मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई वेद कतेव संसार हब्बा तू बाहर नानक का पातशाह दिसे जाहरा आसा महला पांजवा।

का नाम संग हो सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याई है। नानक गुरमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लख बाही। नाम जपते पार पराही, अनक बिघन जय आय संघारे। हर का नाम तत्काल उधारे, अनक जो

नौ खंड पृथ्वी फिर चर जीवे मां दास्त पीसर थी वे अगन माहे होम प्राण कन का सब है भरपूम दान न्योली कर्म करे भवासन जैन मार्ग संजम है साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तो भी हो में मैल न जावे हर के नाम संसर कृष्णा है नानक गुरमुख नाम जब तगत पाए मन कामना तीर्थ दे छुटे

गए अंतर जामी अपनी गत मित जान हो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्त तुमते होए नानक अवर न जान सकोए। सार्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सास संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम में उद्दम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बाणी में अमृत बाणी हर को जसन रसन खानी।

गौंग जतन करे तो भी सुरपंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तो वह उस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संसाई सुहावन चीत जो बहराई तसो प्रीत।

सूत्रधारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुम्हरी गत में तुम ही जानी नानक दास दा कुर्बानी शलोक देन हार पर छोड़ के लागे आन सुहाए नानक नसी जई बिन नावे पत जाए अशपरी दस मस्तु ले पाछे पावे

जनमाल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस्वस्त्र मिथ्या रंग संग माया पीक हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अपमान मिथ्या आप सुपुर कर्त गुमान आस्थिर भग साध के शरण नानक जब जब जी वे हर के चरण मिथ्या सर्व रन पर निंदा सुनह मिथ्या पर दर को मिथ्या नेत्र पेख पर तिरया रूपाद

जय प्रसाद से सुय जय मन आठ पैर ताका जस का विजय जय प्रसाद सबको माने मुक्ता को जस रस मखाने जय प्रसाद रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभु जी जपत दरगह मान पावे नानक पद से तीकर जावे जय प्रसाद रो कंचन देही लिवलाओ तिस राम स्नेही जय प्रसाद तिरावला रहत मन सु पावे हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सर सिद्ध ठाके मन सरणी पर ठाकर पर ताके जय प्रसाद तुझको ना पहुँचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु ऊंचे जय प्रसाद पाए दुर्लभ दे नानकता की भगत करे जय प्रसाद भूखन पैरी।

साजन मीत कुटुंब निस्तारे साधु के संग सोतन पावे जिस तन ते साको बरसावे साध संग धर्म नाय करे सेवा साध के संग सोवा सुरदेवा साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्व थान गम नानक साध के संग सबल जन

कै गुण गाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग न मनते विसरै, साध संग सरपण निस्तरै, साध के संग लगे परम मीठा, साधु कै संग घट का डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी।

दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सोजी परे सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म ही तावे जीवन मुख सो कावे।

कि जनता जिस मन माए तिसते बिरथा कोई ना है रे मन मेरे सदा हर जाप अवनासी प्रव्यापे आप अपन किया कछ ना होए जे सो प्राणी लुचे कोए।

नान सो जन सत्समता श्लोक रूप ना रेख ना रंग किस तरह गुण ते प्रभिन्न ते बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न अस्पति अविनाशी प्रमन में राख मानो की तू प्री त्याग तिस्ते पर ना ही किस कोय सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा

संसार जन का सेवक सो बड़भागी जन के संग एक लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आदि सचयुग आदि सच है वै सच नानक होसी पै सच आष्टपदी चन सत सत प्रसन्न हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत वेखण हार नाम सत सत हवन हार राव सत सत सतधारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जसंता भूजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जन मान्या कर्ण करावन तिन मूल पछान्या जा केर दे विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान तिस मन प्रटाया पैते निरपोए वसाना जिस देव जा तिस माय समाना बस्त माय ले बस कढाए ता को भिन्न न कहना जाए बूझे बूझण हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकर का सेवक आज्ञाकारी ठाकर का सेवक सदा पुजारी ठाकर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकर के सेवक की निर्मल रीत ठाकर को सेव जाने संग प्रभु का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभु पालन हारा सेवक की राखे नंकारा सो सेव दया प्रभु धारे नानक सो सेवक सास सास समारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को दे बढ़ाए अपने सेवक को नाम जपाए अपने सेवक की आप पद राखे ताकी गदमत को इन लागे प्रके सेवक को नाम पहुंचे प्रके सेव ऊचते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दै दिस प्रटाया निके की री में कल राखे भस्म करे लश्कर कूड़ लाखे जिसका सास न काटते आप तक राख दे करात मानस

संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर पाव समीत विसारो चरण कमल हृदय में उधारो कण कांड सुप्राव समर्थ दृढ़ कर गह हो नाम रवाथ एव तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मानते एक आस राखो मन माए सर्व रोग नान मिट जाए जिस धन को चार कुंटल धावे सो तन हर सेवा दे पावे जिस को निर्वाशे मीत सो सुसाधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा बजर की सन्नी अन को भावी रोग न जाए।

ठाकुर कम पारी अपना जी सुखी अपने आसन तय जनमन को काम नासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब चौंकी त्रास को सोए जब अवगत गोचर प्रवेका तब चित्रगुप्त के पूछ लेखा जब नाथ निर्जन गोचर का दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप आप ये चर्चा नानक आपन रूप आप ही पर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैर कहो कहत होता जय निर्जन का निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान

जाने आया जिस प्रसाद सा जग तराया जाने आवन का ये सुआओ जन कै संग चित आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार ना।

निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लगा रंग, जय जय शब्द नाद बाजे सुन सुन आनंद करे प्रभुकार जय प्रटे गोपाल महांत कै मत है नानक उदरे तिन कै साथे।

निधान हरि फुल दिमे जय कर किन्ने अनेक त्रंग है भेद है भंग है आदि दुल निवाज है गरी मुलख राज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है परभुगत प्रभा है सुजुगत सुधा है

प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मदाम अंग आसन अपंग उपमा पार गत मिति उदार जल थल अमांड दिस्वे से अपंड

पायो कूर करिया उर दियो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवे उबाज बेनती चाओ पई हमरी कर।

पव अवरछा मेरी तुम करो सेखे बारे सिख संग्रो दुहट जिते उठवते उत्पाद।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन तन साहेब श्री गुरु रामदास सोडी सुल्तान गुरु ग्रीव।

0: करे जित सिर जाए
1: सो करे जित सिर जाए सुध। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
2: गुरु प्यारी साहब संगत जी साहबां दी रहमत होई है। आप संगतां ने श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन गुरुद्वारा साहिब श्री मौतों सरवण कीते हन। आप संगतां नूं कीर्तन सरवण करवा रहे सन। सत्कारयोग रागी भाई सरबजीत सिंह लाडी दरबार साहब वाले ते उहनां रागी जथा समूह जथे दा बहुत बहुत धन्नवाद। आओ हुण सतगुरु साहिब जी वालों बख्श मुख वाग दी कथा आप संगतां नूं श्रवण करवा रहे हन। सत्कारयोग ज्ञानी कुलदीप सिंह जी दमदमी टकसाल वाले उन्हां पासों श्रवण करिए। सो आप संगतां नूं बेनती है जिस तरह पिछले दिनां विच आपां साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज उन्हां दे शहीदी दिहाड़े मनाए हन। सो जो कल दे प्रोग्राम भी होणगे एतवार दे संगतां वल्लों छे श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ हन जिन्हां दीआं संपूर्णतावां कल 10:30 बजे तिकर होणगीआं उपरंत जो सारा दिन कथा कीर्तन दे दीवान सजरे हन। सो आप संगतां नूं बेनती है आप जीआं ने वध तों वध हाजरियां भरनीआं जी। जिन्हां संगतां वल्लों श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ हन उन्हां नूं बेनती है कि हुण जो माधी अरदास ठीक 9 बजे होणी है आप जीआं ने 9 बजे तिकर गुरु घर पहुँच जाणा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।

पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, प्रसाद दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा माननी वाह मत उची मत पादे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने पहद सदा सहाई दतार जी ओ श्री ननकाणा साहिब। समूह गुरधामा दे खुले दर्शन दीदार, सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नू बख्शो। निमाणिया दे माम, निताणिया दे ताम, नियोटिया दी ओड़, निआसरिया दे आसरा। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ओ। आप जी दे हजूर अरदास बेनती, आप जी ने कृपा रहमत कीती है। अमृत वेले तो सोहने तख्तां ते प्रकाश मन होके दर्शन दीदार बख्शे हन। आप जिया का कोटान कोट धनवाद शुकराना है। अमृत वेले तो आप दी पावन हजूरी विच सुखमनी साहब जी दे पाठ, पंज बाणियां दे नेतनेम उपरंत आसा की वार दे कीर्तन होए। उपरंत सच्चे पातशाह जी आप जी वालों बख्श मुख वाग दी कथा विचार, गुरमत विचारां छे पौड़ियां आनंद साहब दा जाप होया। समुचियां सेवावां निभाउंदियां होया भुल जुग दी खिमा बख्शना। पढ़ी सुनी बाणी कीर्तन कथा दा भाव आईया संगतां दे हिरदे ते वसाउणा। सब दियां दर हाजरियां तिल फुल भेटावां प्रवान करनियां। धर्म करो नाम दान चढ़दी कला दी दाद बख्शनी। परिवारां विच सुख शांति, कारोबारां विच वाधे करने, जेलां विच बंद गुरसिखां दी रिहाई। चढ़दी कला करनी अपने प्यारे खालसा पंथ दी चढ़दी कला करनी। आप जीआं दे भाणे विच रहण सुखां नाल बतीत होई आया दिन आप दे भाणे विच बाणी पढ़दिआं सिमरन करदिआं बतीत होवे। बख्शियां खजानिआं विचों कड़ा प्रसाद दी देग सज के हाजर है। करी पाक साल सोज पवित्रा हुण लाभ भोग हर राय। आप जी दा सीध प्रसाद जो छके नाम, वाहिगुरु वाहिगुरु जपे। श्री मुख वाग दी बख्श करो सही प्यारे मेल, जिना मिले आम दा नाम चितावे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्या पही अकाल की, तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की, जो प्रभु को मिल बोच है। खोज शब्द में

वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई आए जिस जिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दे आवे ताए। सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान तरके बोलना जी।

पुन आठ पैर हर त्याए हर जस नित सुन सलोक दया करण दुख हरण उचरण नाम कीर्तन है दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत न माया पाहे बुलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन उपाय मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जा प्रभ पै दयाल न व्यापै माया कोट अगा गए नास हर एक ते आया निर्मल पै शरीर जन तूरी नाया मन तन पै संतोख पूरन प्रभ पाया तरे कुटुंब संग लोग कुल सबाया सलोक गुर गोबिंद गोपाल गुर गुर पूर्ण नारायण गुर दयाल समरथ गुर गुर नानक पत द उदाहरण भौजल बिखमसगाह गुर बोए थे तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी लग्या पौड़ी धन धन गुरदेव जिस संग हर जपे गुर कृपाल जब पह ता अवगुण सब छपे पार ब्रह्म गुरदेव नीचो उच थपे काट सिलक दुख माया कर लीने आप दसे गुण गाए बेअंत रसना हर जसे सलोक दृष्टांते को सुनियांते को वर्तांते को नर हरै नाम दान जचंत नानक दयाल पुरख कृपा कर है हिक सेवी हिक संभला हर एक सपै अरदास नाम वखर तन सांचया नानक सच्ची रास पौड़ी प्रभ दयाल बेअंत पूर्ण एक एहो

पल हर जीते अंतर पारियो। जत देखो तत दोह की रासी, अजुना पतहे निगम पै साकी। गौतम नार उमापत स्वामी, शीस धन सहस पग गामी। इन दूतन खल बद कर मारियो, बड़ो निलाज अजहू नहीं हारियो।

बेपरवाह सदा रंग हर कह जा को पाख स्वामी रहाओ ऊच समाना ठाकर तेरो अवर न काहू ताने ऐसो अमर मिलियो भगतन कौ राच रहे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने निरप होए रहे लेव एक नानक हर मन माने टोडी मोहल्ला पांजवा हर बिसरत सदा खवारी ताको तोखा कहा ब्याप जाको ओट तोहारी रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अर जारी नवखंड।

सो सुखिया धन उस जन्मा नानक तिस बलहारी टोडी मोहल्ला पांजवा घर दूजा चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद तायो री मन दे दिस तायो माया मगन स्वाद लोभ मोहयो तिन प्रभ आप भलायो रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यो एक मोहत न एह मन लायो बिग स्यो पीख रंग कसुंभ को पर ग्रह जोहन जायो चरण कमल स्यो भाओ न कीनो नै सतपुरख मनायो तावत को तावे बो पाती जो तेली बल्द भरमायो नाम दान इसनान न कियो एक निमख न कीरत गायो नाना झूठ लाए मन तोख्यो नै बूझियो अपनायो पर उपकार न कबहू किए नि सतगुर सेव ते आयो पंच दूत रच संगत गोहट मतवारो मद मायो करो बेनती साध संगत हार भगत वछल सुन आयो नानक भाग परियो हर पाछ राख लाज अपनायो टोडी मोहल्ला पांजवा मानख बिन बूझे बिरथा आया अनक साज सिंगार बो करता जो मृतक ओढाया रहाओ ताए ताए कृपन शर्म कीनो एकत्र करी है माया दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज न आया कर अभरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया संग न पायो अपने भरते पीख पीख दुख पाया सारो दिन समजूरी करता तो मूसले छराया खेद पयो बेगारी न्याई घर के काम न आया पयो अनग्रो जाको प्रभ को तिस हिरदे नाम वसाया साध संगत कै पाछे परयो जन नानक हर रस पाया टोडी मोहल्ला पांजवा कृपा निद बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पावो दूरा मातक ले ले लावो महापतत ते होत पुनीता हर कीर्तन गुण गावो आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुहारो पावो जो तू दे तहिए त्रिपत आनकत हो तहावो साध ही निकट जानो प्रभ स्वामी सगल ऋण होए रही है साधु संगत होए परा

अवर कछु मेरे संग ना चल, मिले कृपा गुण गाम रहाओ, राजमाल अनेक भोग रस सगल तरवर की शाम, ताए ताए बो बेद को तावे।

तुझ बिन कौन उधारे रहाओ, खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्ब अर्थ बिचारे, साध संग परम गत पाई है माया रच बंद हारे, चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे, नानक अनंत करे।

दूर रहाओ दै दसरा रहया जस तुमरा अंतर जामे सदा हजूर जो तुमरा जस गावे करते सेजन कबू न मरते चूर तंद बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस जी के बिन हर नानक जाने कूर टोडी मोहल्ला पांजवा माई मेरे मन की प्यास एक खिन रहना सको बिन प्रीतम दर्शन देखन को धारी मन आस रहाओ सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अबनासी बिमल जाको जास संत प्रसाद मेरे पूर

अंतर जामे मन को भाव न रहाओ। सुंदर सुगल चतर सब बेता रिददास निवास भगत गुण गावन। निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सोखावन। बिस्मन बिस्म भय बिस्मादा आनना बियो दूसर लावन। रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दा सदा बल जावन। टोडी महला पांजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोबिंद भजन बैन हड़का जल रहाओ। छोड़ सियान बहु चतराई दुए कर जोड़ साध मग चल। सिमर स्वामी अंतर जामी मानक देह का एह उत्तम फल। वेद बख्यान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल। प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमन दहन पै मल। टोडी मोहल्ला पांजवा माई चरण गुर मीठे वड्डे भगत देवे परमेसर कोट फला दर्शन।

बोहर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब।

मन को सुख कोट आनंद राज सुख भोगवै, कोट आनंद राज सुख भोगवै, हर सिमरत बिन से सब दुख रहाओ। कोट जन्म के किल बिख नासै, सिमरत पावन तन मन सुख, देख स्वरूप पूर्ण पई आसा, दर्शन भेट ते उतरी भुख। चार पदार्थ अठ महासिद्ध, काम तेन पार जाते हर हर रुख, नानक सरन गही सुख सागर, जन्म मरन फिर गर्भ न धुख। टोडी मोहल्ला पांजवा, हर हर चरण हृदय उर थार, सिमर स्वामी सतगुर अपना, कार्य सफल हमारे रहो। पुन दान

पग जन के राम नाम सब है राम नामा रस गुरमत रस रस के हर अमृत हर जल पाया सब लाती तिस तिस के।

की आवे देहि मन भगत कराई एक ना सतगुर मेल सुख देवै एक मन मुत तंद पटाई सब को तेरा तू सबना का मेरे करते तू सबना से लिखिया लेख जे ही तू नजर करे ते आख होवै बे नजरी नाई को भेख तेरी वड्याई तू है जाने सब तुदनो नित त्याए जिसनों तुद पावे तिसनो तू मिल है जय नानक सोताई पाए सुई महला चौथा जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाए ते मुक्त पै जिन्हा नाम ते आया तिन पवित परम पद पाए मेरे राम हर जन आरोग पै गुरवचने जिना जपया मेरा हर हर तिनके हो मेरो गए राव ब्रह्मा बिसन महादेव त्रै गुण रोगी बिच होमे कार कमाई जिनकी है तिसन चेते बपड़े हर गुरमुख सो जी पाई होमे रो सब जगत व्यापिया तिनको जन मरण दुख भारी गुर प्रसादी को ला छुटा है तो जन को होम बलिहारी जिन श्रेष्ठ साजी सोई हर जाने ताका रूप पारो नानक आपे बेख हर बिकसै गुरमुख ब्रह्म विचारो सोई महला चौथा कीता करना सर्व रजाई किस कीचा जे कर सकिया अपना की

नाही जे किछ कर हम सकै ज्यों पावै तिवें बख्श रहाओ सब जियो पिण दिया तुद आपे कारे लाया जिया तू हुकम करै ते को कर्म कमावै जिया तुद तुर लिख पाया पंच तत् का तुद सिस सब साजी को सेवा करो जे किछ कीता होवै एक ना सतगुर मेल तू बुझावै एक मन मुख रे सै रोवै

कूड़े मूर्खी हठी सारहाओ भेगद गावे सच न कुमावै कह तू मेली नहीं आवै अतीत सदाए माया का माता मन नहीं पीत कै मुख राताय कौ नानक प्रभु सुनी जाय कुचल कठोर कामी मुद की जाय दर्शन देखे की वड्याई तुम सुखदाते पुरख सभाई रहाओ दूजा सोई महला पंजवा बुरे काम को उठ खलोया नाम की बेला पे पैसोया औसरे अपना भुज नाइया नाम माया मोरंग लुपटा ना रहाओ लोभ लहर को बिगस फूल बैठा साजना का दर्शन डीठा कबू ना समझा ज्ञान गवारा बोर बोर लपटो जंजारा रहाओ दिखे नाद कर्ण सुन पीना हर जा सुन आलस मन कीना दिस नाई दे पेकते अंधे छोड़ जाए झूठे सब तंदे रहाओ कौन न बख्श करी जाए कर कृपा मोए सा संग दी जाए तो कुछ पाई है जो हो ये रेना जिसे बजाए इस नाम लेना रहाओ सुई महला पंजवा कर में ठाकुर नदन आवै गल में पौन लह लपटावै गल में पौन लह लटकावै पर में पूला साक्त फिरता नीर बरोले खप खप मरता रहाओ जिस पहाण को ठाकुर कहता ओह पान लै उसको डुबता गुनेगार लून हरामी पहाण नाव ना पार ग्रामी गुरम नानक ठाकुर जाता जल थल मयल पूर्ण बधाता सुई महला पंजवा

हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ। हर कीर्त कल जुग पादे उत्तम हर पाइये सतगुर माजा। ओम बलहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा। दर्शन साध मिल्यो वड भागी सब किल विख गए गवाजा। सतगुर साहो पाया वड दाना हर किए बो गुण सांझा। जिनको कृपा करी जग जीवन हर और धार्यो मन माजा। धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। जिनको कृपा करी जन जीवन जिनको कृपा करी जग जीवन हर और धार्यो मन माजा। धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जीओ।

अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट सहतर सिमरत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सकल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीव महा उदास तपीसर थीव अगन महे होमत प्राण कनक असव हैवर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजमत साधन निमख निमकर शरीर कटावे तो पी होमे मैल न जावे हर के नाम समसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जापत गत पाहे मन कामना तीर्थ दे छुटे गर्भ गुमाना मन ते हुटे सोच कर दिन सियर रात मन की मैल ना तन ते जात इस देही को बो साधना कर मन ते कबू न बिखिया टरे जल धोवे बो दे अनीत सुध कहा होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बो मूच बहुत सियाणप जमका पो ब्याप अनक जतन कर त्रिसन्ना त्राप पेख अनेक अग्ने बुझे कोट अपाव दरगह नहीं सिजे छूटस नाही उब पयाल मोहे ब्यापे माया जाल अवर करतूत सगली जम डान गोविंद भजन बिन तैल नहीं मान हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांग साध जिना की सेवा लाग जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संग होमे छोरे जे को जन्म मरण ते डर साध जिना की सरणी पर जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सू गनिये साबते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल श्रेठ साजना सुख दुख जन समद्र टेता नानक पाप पौन नहीं लेपा निर्तन को तन तेरो नाहो नथावे को नाओ तेरा थाओ नमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटाको देवो दान करन करावन हार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी अपनी गात मित जानो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी ओत तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम में उदम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जह घट वसै हर नाम सलोक निर्गुण

हम पारक तेरे तुमरी कृपा मह सुख कन्हेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते होए सो आज्ञाकार।

त तैसी बेख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताए साई जगत नानक ओ पुरख कहिए जीवन मोकत पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर राखे तैसा तैन नाओ आपे करन करावन जोग प्रभ पावे सोई पुन होग पसरे आपोहे अन तत रंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा परगास पार ब्रह्म करता।

नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास। कई कोट तत् के बेते सदा निहारे एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीव है अमर पै सद सद ही जीव है। कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सहज समाव है। अपने जन को सा सास मारे नानक होए परमेश्वर।

नानक गर्भ गले अष्टपदे जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सवान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बेटा का जंत आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे बजोन परमावे तन भूम का जो करे गुमान सो मूरख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानकीहा मुक्त आगे सुख पावे धनवंता हो कर गर्भावे तृण समान का संग न जावे बोलस्कर मान कूपर करे आस पल पीतर ताका होए बिनास सब ते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तस करे खुवारी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सोजन नानक दरगे परवान कूट कर्म करे हो तारे शर्म पवे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फेर अवतार अनक जतन करे आत्म ने दरवे हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्ब की रेन जाका मन होए को नानक ताकी निर्मल सोए जब लग जाने मुझते का छोए तब इसको सुख नाही कोए जब बे जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग निश्चल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूट है गुर प्रसाद नानक हो छूटे सहस कटे लख कोट धावे त्रिपत नावे माया पाचे पावे अनक भोग भिख्या के करे नै त्रिपतावे खाप खाप मरे बिना संतोख नहीं को राज सुपन मनोरथ व्यर्थे सब काज नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए कर्ण कराम ने आपे आप सदा सदा नानक हर जाप कर्ण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृढ़ करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किश की न सपने रंग सब ते दूर सब हू कह संग बूझे देखा करे बबेक आपे एक आपे अनेक मरे न बिन से आवे न जाए नानक सदी रह समाए आप उपदेसे समझे आप आपे रचिया सब कह साथ आपके नो आपन बेथार सब कछ उसका ओ करने हार ओते पेन कहो किश होए थान थनांतर एक सोए अपने चलते आप करने हार कोते करे रंग अपार मन में आप माने अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए सात सात सात प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोड मदे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरबन बख्याणी पवित्र पवित्र

ताकि कत मत कोई न लाके, प्रभु के सेवक को न पहुँचे, प्रभु के सेवक ऊंच ते ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक देह देश प्रगटाया, नीकी कीरी मह कल राख, भस्म करे लश्कर कोट लाख, जिसका शासन काटते आप, ताको राखत दे कर हाथ, मानस जतन कर्तव पात, तिसके कर्तव व्यर्थे जात, मारिन राखे अवर न कोए, सर्ब जिया का राखा सोए, काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ लाख वडाणी, बारंबार बार प्रभ जपिय, पी अमृत मन तन तृपिय, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके शवर नाही दृष्टाया, नाम धन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जन तृपताने, मन तन नामे नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै साध काम, बोलो जस जेहबा दिन रात, प्रभु अपने जन की निदात, करे भगत आत्म कै चाए, प्रभु अपने सिओ रह समाए, जो होवा होवत सो जान, प्रभु अपने का हुक्म पछान, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कै एक न जानो, आठ पहर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक से जन पूरे, मन मेरे तिन की ओटले, मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी सरन सर्व सुख पावे, तिसके दर्स सब पाप मिटावे, अवर सियानप सगली छाड़, तिस जन की तू स

तैसके संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिखी करे प्रतपाल शिव को गुर सदा दयाल सिखी गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख बेकार ते हटै सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वड भागी हे सतगुर सिखा हलत पलत सवारै नानक सतगुर सिख नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै गुर के ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावै हर हर नाम हृदय सद त्यावै।

तिसको होत परापत स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मातले बीस बिस्वे गुर का मन माना सो सेवक परमेश्वर की गत जाना सो सतगुर जसरे दे हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सरबन दान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कछ भरम सह सियान भलया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ पागे पाइए सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चन गत निर्मल रीत पीड़त संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर गै गवै सुन कर बचन करन अगाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अख्यो जा का मंत्र अमर दृढ़ पेखे हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तस लय मिलाए जेहबा एक औसत अनेक सत पुरख पूर्ण विवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने ना पाई अनक भगत बंधन नित कर चरण कमल हिरदे सिमर सत बलहारी सत गुरे अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावे जन कोय अमृत पीवे अमर सो होय उस पुरखा नाही कदे बिनास जाके मन प्रगटे गुण तास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेव को दे मोह माया के संग न लेप मन में रख हर हर एक अंधकार दीपक परगासे नानक भरम मोह दुख तय ते नासे तपत माहे ठाड वरताई आनंद पिया दुख नाठे पाई जन मन के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पौ चुका निरभो हो बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिसका साथिन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाए चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस सरवन निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्ब निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग भय प्रगा साध कै संग रच रचना अपनी कल थारी अनक बार नानक बलहारी स्लोक।

भगती लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रावधान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मिर सरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो चरण कमल से लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक कोटे को आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृढ़ महा सुख होए हरत पावे बिरला कोय जिन चाक्या से जन त्रिवधाने पूर्ण पुरख नहीं डलाने सुबर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध कै संग परे सन आन सब त्याग अंतर परगा स्यान दिन लिव लाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवकी मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवकिनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन मन दुख भ्रम गया इस पुनी सरदा सा पूरी रव रया सद संग हजूरी जिसका साथन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सुख बिसरे जे काल न पन सुख बिसरे जे किया जन सुख बिसरे जिन सब किछ दिया सुख बिसरे जे जीवन जिया सुख बिसरे जे अगन मै रख गुर प्रसाद को बिरला लख सुख बिसरे जे बिख ते काड जन्म जन्म का टूटा गांड गुर पूरे तत ए बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो इहो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो भगत पहे तरिये संसार बिन भगती तन हो सी छार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए बिसराम सगल दुखा होवत नास नानक नाम जपो गुण तास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंत्र अंतर ही सवाओ नेत्रों पेख दर्श सुख होए मन बिकसे साध चरण धोए भगत जना कै मन

लाल ए रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुनंद करे प्रभ गाजै।

दूर कतहु न जाई, राव रहया सर्वतर मैं मन सदा तिहाई। जह जह पेखो तह हजूरा, दूर कतहु न जाई, राव रहया।

बिन सजाए जो निमक मह सो अलाप सुख भनिया रहाओ। प्रत पाले अप्याओ दे कछ ऊन ना होए सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई अशा।

कह रविदास अकथ कथा बहो काय करीजै, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजै। बिलावल जह कुल साधु बैसनो, होए बर्ण अबर्ण रंक नहीं, ईसल बिमल बास जानिए जग सोए रहाओ। ब्राह्मण बैस सूद अर खत्री, डोम चंडार मलेच मन सोए, ओए पनीत पग

कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की कीजे सानेह फल आस सब व्यर्थी जाई रहाओ जो दिसे माया मोह कुटुंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई।

सो प्रभ मैं मन माहे त्याय कट अव कट जद कत है सहाय रहाओ रंग कराओ जाके एक समान कीट हस्त सगल पुराण बियो पूछ न मसलत तरे जो किछ करे सो आप है करे जाका अंत न जान सकोए आपे आप निरंजन सोए आप अकार आप निरंकार कट कट कट सब कट आधार।

संत संगंत प्रभु डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सकल समग्र एक स्वाट माही अन करंग नान अधिष्ठाए नवनीत अमृत प्रभु का नाम दे ही मैं इसका विश्राम शून्य समाध अन तैन कह न जाए चजमे स्वाद तीन दिखा जय साहब दिखाए नानक तीजन सोजी पाए सो अंतर सो बार आनंद खट खट भी अवरिया भगवंत तरण माया आकाश प्याल सर्वलोक पूर्ण पद पाल बण तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा करम पौन पाणी वे संतर माए चार गुण दै देश समाए तिस ते बिन नहीं कोठाओ गुर प्रसन्न सो पाओ बीज प्राण सिमृत में देख सुशीर सुर नगत्र में एक बाणी प्राप्त की सबको बोले आप डोल न कबू डोल सर्व कला करके लेके हिल मोल न पाई गुणे मोल सर्व ज्योत में जाके ज्योत धार रहे हो स्वामी उत्पोत गुर प्रसाद ब्रह्म का नास नानक तिन में ए विश्वास संत जना का वेखण सब ब्रह्म संजना के हृदय सब धर्म संजना सुनो सब वचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जता तिसकी रह सतो जिन साधु सब कह जो जो है सोई सुख मन करण करावन हर प्रभ जाने जिन अंतर से बार पी ओ ही नानक दर्शन देख सम्भोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सोली उत्पाद तिस भावे तो करे विस्तार तिस भावे ते अहंकार कला लगी न जाए जिस भावे ते लहि मिलाए कवन निपकण किए दूर आपे आप आप भरपूर अंतर गज आप जनाए नानक दे जन आप जाए सर्वभूत अवतारा सर्व नाना पेखण वाला सकल समग्री जा खादना आप जा सा भी सुना आवन जाने खेल बनाया आगे कारी की नीमाया सबके मध्य लिप्त हो रहा है जो कुछ कहना सब कह आगे आवे आगे जाए नानक जा पावे तो लहे समाए इस होए सुनाई बुरा उरह कहो कि ना कि करा आप लग नूत कर दूता तो नीकी आपे जाने अपने जी की आप साच तारी ससा चोत होता अपन संग्रह ताकि गत में तो कही ना जाए दूसरे तो सोची पाए तिसका किया सब प्रवान गुर परछा नानक जान जो जाने ते सदा सुगोए आप मिलाई लय प्रसोयो तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्ति हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस पर सा सब जगत रह जन अवन कह सुहाओ जन कह संचित अवै नाओ

गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुने उपदेश पार भ्रम निकट कर पेक साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित्या गुत रंग संतना के तुर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साथ संग अग्नि सागर तरो हर तन के पर लियो पंडार नानकुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साथ संग पद परमानंद नरक निवारे उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस बियो चित हो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक एक रूप जाके रंग ने गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल

ताका संग जाके मन लगा हर रंग जय जय शब्द अनाहद बाजे सुन सुन अनद करै प्रभ गाजे प्रगटे गोपाल मात के माथी नानक उदरै तिन कै साथी शरण जोग सुन शरणी आई कर कृपा प्रभ आप मिलाई मिटगे बैर पए सवरीन अमृत नाम साथ संग लैन सो प्रसन्न पए गुरदेव पूर्ण होई सेव की सेव हाल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभही खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्रचीत सुखमणि सहज गोविंद गुणनाम जिस मन वसै सोत निधान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रधान

नानक दिसै प्राप्त होए खेम शांत रिद नवनित बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्राप्त ज्ञान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इष्णान चार पदार्थ कमल प्रकाश सब के मस कुलतिवदास सुंदर चतुर्दत का वेता समदर सिंह दृष्टिता ए फण ते जन कै मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने ये निधान जपै मन कोए सब जुग में ताकि गत होए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमर शास्त्र वेद वखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोटि अपराध सात संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाकै मस्त क्रम प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए।

आओ सुख दिन वाला ओ काल पुरख परमात्मा जिस दियां दित्तियां दातां दा शुकराना कर दें आपां हर एक सिख दा फर्ज है ओ मालक दियां दित्तियां दातां दा शुकराना करना क्योंकि हर एक चीज उस वाहिगुरु अकाल पुरख की दित्ती हुई है। ये तियां पुत्र धन दौलत महल माड़ियां खाण वास्ते भोजन पहनण वास्ते पोशाक ये सारे उस मालक दी दित्ती हुए ने। साडा फर्ज है उस मालक दियां दित्तियां दातां दा शुकराना करना क्योंकि मेरा गुर पूरा सुखदाता हर एक सुख देने वाला गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी गोद दे अंदर आपां जुड़ बैठे हाँ समूह परिवार जो इस बच्ची दी दात उन्हां दी झोली पाई है इस खुशी दे अंदर सतगुरां दा ओट आसरा लै रहे हाँ गुरु दी गोद विच आपां बैठे आओ गुरु दे शब्द नाल जुड़ना करिए।